0: 44
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहाजी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-23-23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: ਫਾਈਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ M&R ਰੂਫਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਫਿੰਗ, ਸਾਈਡਿੰਗ, ਸਟੁਕੋ, ਸੋਫਟ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਿਮ, ਫਲੈਟ ਰੂਫ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ 403-903-0483 ਯਾਨੀ 403-903-0483 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। M&R Roofing and Siding Limited। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते जो भी विचार पेश किए जाते ने वो उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी, गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी। अज दे पावन पवित्र फरमान विच सतगुरु पातशाह ने एक अहम नुक्ते का जिक्र किया है। आपा आम करके जिहदे कोल चार पैसे होण, जिहदी आग्या उहदे कहने विच होवे, उहनूं आम करके आपां कहिंदे वी फलाना बड़ा भागां वाला है, उहदे धी पुत उहदी आग्या च ने, उहनूं वाहिगुरू ने बड़ा कुछ दित्ता है, लेकिन भागां वाला कौन है? उहदा जिक्र अज दे पावन पवित्र फरमान विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कीता है। पैसियां नाल कोई भागां वाला नहीं, केवल ते केवल बच्चों के आग्या घर होण करके कोई भागा वाला नहीं। असली भागा वाला कौन है? हजूर जिवें जिक्र करनगे, सरवण करिए, मन की एकाग्रता लई यतन करो, तो बोलो सत।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश किए जाते ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब जी के असीम कृपा से आज हमें ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए हैं, अब हम यहां से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठिकाना, मूल स्थान कहां पर है। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कोई भी प्राणी, चाहे कितना ही वृद्ध है, कितना ही रोगी है, कोढ़ी है, कितना ही मानसिक परेशान है, कितना ही उसको घाटा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। और ये पता होते हुए कि मृत्यु डेफिनेट है और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, चाहे कितने वृद्ध हो जावा, कितना ही हम दुखी हो जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज भी है भी, क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपना एक रैन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता, इतने मृत्यु होने की बारी आ जाती है। यू क्या सांग हुआ, क्या व्यवस्था हुई। एक विशेष विचारणीय विषय है कि इंसान सारा जीवन अपने परिवार पोषण में मकान बनाने और तथा कुछ आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने में सारा जीवन लगा देता है। बच्चों की शादी विवाह करके न्यू सोचा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी, इतने बुढ़ापा दस्तक दे देता, आकर किले में भी आ गए भोले तैयार, कदे आंख बनवानी, कि जाड़ पड़वानी, कि सिर में दर्द, कि कड़े दुख है कमर में दर्द, ऐसी बिरान माटी हो इस जीव की। अब हमारे को दूर से दिखाई देने लग गया, क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने, हमारे को आज वो वृद्ध अवस्था खड़ी दिखाई देती है। इसका विकल्प क्या है कि परमात्मा के चरणों में लगा रहने से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने से, वो दुख में समय हमारा आसानी से व्यतीत हो जाएगा। परमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हल्का बनेगा वो दुख। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और अच्छे उनको डिपॉजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी समय 50-50 कर लेते हैं और पिताजी के पास केवल पेंशन रह जाएगी, और फिर पेंशन के चक्कर में 31 तारीख ने पिताजी को पूछेंगे कब लाओगे पेंशन। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटायर हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पुत्र वधू, जितनी पेंशन मिल रही थी 5-4 हजार, वह सारी उस पुत्र वधू ने ले ली उसका सामने, और उस बुढ़े ताई 10 रुपये दे दिए रिक्शा के, अगले दादा तू बैठ के करना चाल, मैं बाजार में सामान ले आऊंगी। तो कहने लगी, मैंने पूछा भी आप किस लिए आई हो पेंशन लेने, तब बुढ़ा आया। वो कहने लगी, इसने दिखता कोई ना, गिन देना हो मैं गेल लाइक के गिनवा लू, वह जाली जब उन्हों का बुढ़ा रहा गिन दे तो मैंने खूब आवे हैं, इसका नो सका कदे बुढ़ा के मैं राख जा, दोबरा 10 रुपये रिक्शा के दे रखे, बाकी सारे लेगी। कहने का भाव ये पुण्यात्मा, एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ था एक बुढ़ा, वो हमारा सेवक बना था, फिर वो पता नहीं क्या उगचुक लागी, दिल्ली का रहने वाला था। ऐसी चर्चा चल रही थी, कहने लगे कि ऐसे बनता है बुढ़ापे में, तो वो कहता है जब पैसे भी ले लें कोई बात नहीं, नाले टॉर्चर भी कर दे, यानी पैसे ले लें कोई बात नहीं वो भी दुख निमट जा, नाले टॉर्चर भी कर दे, बोला टॉर्चर भी गेल करें और परमात्मा ने ये पहले बता रखे हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो परमात्मा की साधना नहीं करते। परमात्मा कहते हैं भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बूढ़े हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे, और बूढ़ा बुढ़िया की चारपाई गेट का आगे डला कर पुत्र वधू कह के जाएगी कि ध्यान रखना दूध को घी को कुत्ते बिल्ली ना खराब कर दें, मैं खेत में चारा लेने जा रही हूं। अब वो बुढ़िया ने दिखे को नहीं, कुत्ता बड़ा शैतान होता है, आंख में चोरनी करके रसोई में पाया करे। पुत्र वधू उनकी आई, देखा कुत्तों ने दूध भी खराब कर रखा और घी भी, तो बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी, तुम्हारा इतना सुख भी कोई ना, तुम कुत्तों ने हटा दो, यानी कुत्तों की से रखवाली कर दो। बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। ये टॉर्चर और नाले होगा गिल। तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर उन तत्वदर्शी संतों के संपर्क में जाकर उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर पुरुष से, परम अक्षर ब्रह्म से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, तो वो केवल जरा मरण मोक्ष आए, जरा और मरण से मोक्ष के लिए यानी से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो जरा मरण इसलिए बताया कि यहां बुढ़ापा सबसे डेंजरस टाइम है इस जीव का, और साथ में फिर मृत्यु, मृत्यु उसते ही गुंडी और होनी डेफिनेट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, और ये मृत्यु हमें कति गंवारा नहीं है और यह हो रही है। इसलिए हमें यह सत्संग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जानकारी परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें दी है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी काल भगवान, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सर ब्रह्म सर पुरुष भी कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की, उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखा है। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को दयालु बताता है, और भगवान उसी का नाम होता है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे। पुण्यात्माओं, और यहां के हम जैसे पदार्थ देखते हैं, बहते हुए झरने, गंगा जैसी दरिया, और दिन रात बन रहे हैं, बहुत अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इसके ऊपर बाग बगीचे, काजू किशमिश सेब संतरे।

एक विशेष व्याख्या की है और गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में। इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर बताया है। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से 22, गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16 और 17 में, और भी बहुत से स्थानों पर गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, इनमें अन्य कोई परमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ज्ञान दाता से और उसके विषय में जानकारी दी है। तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की व्याख्या की है, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो, जो सर्वपुरुष है, क्योंकि यही पवित्र सदग्रंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन वो अब परमात्मा की वाणी सच सिद्ध होती है। भाई सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते, अज्ञानी ही रहते हैं, और गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भूसको, यानी जैसे धान होते हैं, उन दानों को झाड़ लेते हैं, उसके पास प्राण रह जाती है, कोई उस प्राण के ऊपर लठ बजा रहा है, लाठी मार, डंडे मार, उसने पटक पटक का मार रहा, झाड़ रहा है, कुछ नहीं निकला है, वो थोथा भूस है। तो ऐसे ही जो तत्वदर्शी संत के अभाव से जो ज्ञान वेदों को, गीता आदि अन्य सदग्रंथों को पढ़ते हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे उसको कूट रहे हो, अर्थात यूजलेस, निराधार, यानी बगैर किसी लाभ के, किसी वो उसका प्रयत्न है, उससे कोई लाभ नहीं, यूजलेस। तो प्रसंग हम यहां ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा दयालु कहते हैं, और फिर यहां दया नाम की चीज नहीं, मां के पेट से नंगा आता है ये बच्चा, और शुरुआत कहां से हुई थी इसके, अपना कोई लंबे लंबे पत्ते वृक्षों के जोड़ तोड़कर अपना शरीर को ढका करते थे, धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, परमात्मा की दया हुई, तो कपड़ों की खोज होगी, और भी सुविधाएं बहुत सी हमने बना ली अपने स्तर पर। आप कहीं जंगल में जा रहे हो, वर्षा आ जाती है, सारे भी जो बीमार हो चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, ओले गिरते हैं, मट मट शर्म लागे, कट्टा कट की तब भाज दौड़ कर, जान बचा ली तो बचा ली ना, सारा फूट जाए, बेहोश हो जाए, फलट आ जाती है, कितने का जाओ, कोई जच्चा मरो चाहे बच्चा मरो, रोगी मरो चाहे जवान मरो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगने लग गया, क्योंकि हमारी आंखों का जो ऑपरेशन हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया, और हमने उस दयालु भगवान का पता लग गया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान है, पुरुष, छर पुरुष और अक्षर पुरुष। श्रीमद भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, अधिक से अधिक यही बिक्री है, और इसी का नित्य पाठ किया जाता था, नित्य स्वाध्याय के लिए इसी का प्रयोग होता रहा ज्यादातर। गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16-17 में तीन परमात्मा अलग अलग दिखाए, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर ये 16 इधर है, ये 16। इसकी संस्कृति भी हम देखेंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर शर शर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बना है कि इमौ

0: माने इस, लोके माने लोक में, दिवो माने दो, पुरुषो माने परमात्मा प्रभु स्वामी है, दो भगवान है, एक सर एक अक्षर। इसको, इस दोनों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में दो भगवान हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा है। और इसी प्रकार इनके लोक में सर माने नाशवान, सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर माने अविनाशी कही गई है। इव सर माने तो नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, सर माने नाशवान, अक्षर माने जो नाशवान ना हो अविनाशी कहा गया। तो यहां इसमें दो भगवान लिखे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में स्थूल शरीर तो सबके नाशवान है, इनके भी दोनों के, अक्षर पुरुष के भी, और जीवात्मा ये तो किसी की मरती ही नहीं, कुत्ते की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। इन्होंने अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, पुरुष माने प्रभु हैं। इन्होंने लिखना था, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी दो प्रकार के परमात्मा है, भगवान है, पुरुष है, प्रभु है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब यहां किया कमाल 70वें में, उत्तम पुरुष है तो अन्य है, पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम तो अन्य है, ऊपर वर्णित इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, इन दोनों से कोई और है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये दास इस परमात्मा शब्द को डिफाइन करना चाहता, उसके लिए इतना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण बनाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य, यह पुरुष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, ऊपर वालों से दोनों भगवानों से कोई और है, जिसे परमात्मा उदारतम माने कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकत्रयम जो तीनों लोकों में आविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, वह अवय ईश्वर है। ये अवय शब्द है, ये अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा है, ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये दास बताओगा, अब उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष और परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग हुआ। अब ऊपर 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष भी कहा है। अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, और सर पुरुष का अर्थ सीधा ही नाशवान परमात्मा। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्षर क्यों कहा और फिर नाशवान कहा अक्षर पुरुष को, उन आत्माओं। ये सर पुरुष जो है, सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म कहते हैं, और इसका ओम नाम है, ओम मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस अक्षर पुरुष का जो इन दोनों से अलग है, उस परमात्मा के पाने का ओम तत् सत् तीन मंत्र का जाप है। उसमें ओम जाप सर्वब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताएगा ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, यानी पूर्ण ब्रह्म के। ये इनका अलग अलग मंत्र है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सर पुरुष यानी ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये तो सीधा ही सर पुरुष है, ये तो नाशवान है, और अक्षर पुरुष अक्सर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन अक्सर पुरुष भी नाशवान है या अविनाशी नहीं है। अब इसको डिफाइन करना है भाई, अविनाशी भी कहा और नाशवान भी कहा, जैसे इविन की एज देखनी पड़ेगी। ब्रह्म के तीन पुत्र हैं इस काल के, ज्योति निरंजन के, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, वो वर्ष कैसे बनते हैं? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का समय होता है। इसको चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का, ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, इसको लमसम 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि मानकर चलते हैं। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, इससे 7 गुना सतगुण विष्णु जी की, 700 वर्ष इस प्रकार बने हुए वर्षों की, और इससे 7 गुना 4900 वर्ष श्री शंकर भगवान सप्तम गुण की, और 70,000 बार जब तमगुण ये शंकर की मृत्यु हो जाएगी, तब एक युग होगा किसका? उस अक्षर पुरुष का एक युग। और 1000 युग का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है, इसकी काउंटिंग में ब्रह्मा जी की आयु में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग ऐसे बने हुए हैं, 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि है अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, यानी फिर भी मृत्यु है।
1: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले, तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अपने आत्माओं, अभी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति और मंत्र के विषय में विशेष रूप से बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहं सयाति प्रभाव गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो प्राणी शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम के जाप से जो परम गति होती है, जो उपलब्धि होती है, उसको प्राप्त करता है। अब यहां एक साथ, क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत घूम रहे हो, आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं, आपने बहुत से संतों का लिटरेचर भी पढ़ा है, आपको ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं भगवान बजलो काम आओगा। आपको ये प्रमाणित करना अति आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा, उसका डिफाइन करना आपके सामने अति आवश्यक है। विद प्रूफ तब भक्ति तो आप कर लोगे, जब ये पता लगेगा सत्संग रहकर सत्संग सुनाएंगे। तो अब ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थे और ये ज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषि ब्राह्मणों ने गुरुओं ने नकलियों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा रखा था, कैक है भी नहीं बता रखा भक्ति का, ABC भी नहीं बता रखी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, सुबह भी बताया था कि वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद भगवत गीता में बताया है। उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर ब्रह्म को चाहे अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ और परम है। गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में तो अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, और 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताता है, उसकी भक्ति जो करता है उस तत्वदर्शी संत से वो 3 मंत्र का नाम जाप लेके वो उसको प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी ब्रह्म लोक यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है, और ब्रह्म लोक में चला जाता है जिसको महास्वर्ग भी बोला जाता है, और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। गीता जी ज्ञान दाता ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अनुवादीन अनुवादकर्ताओं ने किया है बिल्कुल गलत रखा है, उसको अब स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें बताया कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता फिर उसकी दोबारा जन्म नहीं होता, और अक्षर पुरुष की यहां आयु कैलकुलेशन बता रखी है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ति में, यानी ब्रह्म लोक तक भी सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ये इन्होंने इस पर इसका विश्लेषण नीचे किया है, पुनरावर्ति का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, यानी कोई और है गीता ज्ञान दाता से, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, प्रपद्यम ने पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, जहां जाकर फिर लौटकर संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञान दाता कहता है तेरे मेरे भोजन बोलिए आगे भी होते रहे ब्रह्म लोक पर्यंत, ये सभी पुनरावर्ती में है। इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं है। नहीं तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 का ये सारा आशय खत्म हो जाता है। यहां इसका अर्थ बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो मुझे प्राप्त होकर फिर भी ब्रह्म लोक में जाते हैं तो भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इसका अर्थ ये है। अब इसका 8वें अध्याय का जो आपने 16वें श्लोक का सुना कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम और ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहां कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है ये दास कि इन्होंने अनुवाद गलत किए हैं। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर पुरुष की आयु बता रखी है, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये 8वें अध्याय का और ये 17वां श्लोक, ये 16वां आपने देखा कि आ ब्रह्मनाथ यानी हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ति में वहां गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। 17वां इसमें देखना सहसर युग पर्यंतम, सहसर युग है या सहसर चतुर्युग नहीं है, ये ध्यान करना यहां, क्योंकि ये मूल संस्कृत को हम अनुवाद करेंगे, इन्होंने गलत किया हुआ। इसमें सहसर चतुर्युग नहीं है, सहसर युग पर्यंतम, अह माने दिन और यथ ब्रह्मणे माने इस अक्षर पुरुष का, ब्रह्मणे का अर्थ होता है क्योंकि यहां आयु कैलकुलेशन है तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ बनेगा इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का, बड़े भगवान का, ब्रह्म से जो बड़ा है, ब्रह्मणे बड़ा, उससे बड़ा विदु जान, रात्रिम रात्रि भी, युग संसरांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। अहो रात्रि विदु जना ब्रह्मा, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा, नहीं परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म यानी उस ब्रह्म से नेक्स्ट प्रभु या अक्षर पुरुष का जो एक दिन है उसको इन्होंने अनुवाद गलत किया है। 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यहां पर सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, तो यहां गलती कर दी इन्होंने। इन्होंने ब्रह्मा बना दिया ब्रह्मण का, परब्रह्म को। अब जिसने ज्ञानी नहीं है तो वो ऐसे गुड़ गोबर कर देता है, सदग्रंथों का भी जो आशय बदल देता है उसका अपने नालायक बुद्धि के कारण। ब्रह्मा का यह ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वो 1000 युग, 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी ही रात्रि जानो, और जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले, यानी वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं इन कोड वर्डों को। अब आजिए फिर अपने वहीं आते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे? जैसे भी आपको बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु कैसे बनी थी, 1000 चतुर्युग का दिन उतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु, उससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की, शंकर जी की मृत्यु होगी इतने समय के उपरांत। ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शंकर जी की मृत्यु हो लेगी तब एक काल की मृत्यु होगी, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मृत्यु को प्राप्त होकर उस परमेश्वर की कृपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मांड में। वहां जाते ही परमात्मा का वर है इन दोनों को, दुर्गा और इस काल को, इनके एकदम वहां जाते ही युवा शरीर बन जाएंगे, और ये दोनों युवा होंगे, फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आदि फिर ये करेंगे। कुछ दुर्गा वचन से कर देती है, कुछ ऐसे सृष्टि क्रम से करते हैं। तो वो जो ये काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो एक युग होगा। किसका? इस अक्षर पुरुष का। इसलिए यहां चतुर्युग नहीं लिखा है आठवें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में, ओनली युग कहा है। 1000 युग का दिन और उतनी ही रात्रि होगी, ऐसे बना हुआ युग। एक काल की मृत्यु एक युग होगा, और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु होगी। किसकी? अक्षर पुरुष की। इस प्रकार इसको भी अविनाशी कहा, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक कप है चीनी का बना हुआ, सफेद मिट्टी सी का, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझो सरपुरुष है इसका, ऐसे मेटेरियल का शरीर, इसके प्राणियों का, इसका ये तो अंडरस्टूड है, परस पर गिरा और टुकड़े टुकड़े क्रैक जरूर होगा। और दूसरा एक स्टील का कप हो, चाय पीने का, यानी स्टील धातु से बनी हुई कोई वस्तु हो, तो वो उस मिट्टी की धातु से बने हुए कप के तुलना में घना अविनाशी है। बहुत लंबे समय में हो तो होगा खराब, उसको जंग लगेगा, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा होगा। इस प्रकार उस धातु की तुलना में, मिट्टी वाली धातु की तुलना में शटील धातु अविनाशी कही गई है, लेकिन है इसका विनाश। जैसे सोना ये ऐसे जंग से विनाश को प्राप्त नहीं होता, तो इसको अविनाशी हम कहें। तो ऐसे ही अब इस अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयु है, लेकिन मरेगा, मृत्यु इसकी भी होगी, लेकिन सर पुरुष की तुलना में इसको अक्षर पुरुष ही कहा। आगे फिर इसका निर्णायक ज्ञान दिया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदारते, जो परमात्मा कहा जाता है। अब यहां परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख ना दे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का। और ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पहले ये प्रसंग क्लियर करते हैं कि परमात्मा इति उदारते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सुविधाएं देखते हैं तो अद्वितीय लगती हैं। जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, फलदार वृक्ष, काजू किशमिश सेब संतरे, और ऐसे पदार्थ लाडू जलेबी बर्फी बालू शाही के में बना के खा ले। और फिर देखते हैं कि किस पड़ोस में देखा कि वहां हाहाकार मच गया, क्या हो गया, इकलौता पुत्र था मृत्यु को प्राप्त। फिर समाचार पत्रों में सुनते हैं कि एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक शेष बच गया छोटा सा बालक एक्सीडेंट में। तो फिर भगवान ने जो सुविधाएं दी थी उनका यूज क्या हुआ, हमें फिर वो दयालु कहां रहा प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, इनमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव सतलोक से अपने अमर धाम से सनातन परम धाम से गति करके आता, वहां से चलकर आता है, और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ति और जो सुविधाएं आप मान रहे हो हमारी है नहीं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब काया तेरी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, विनाश होगा, तो अब माया तेरी कैसे होगी। तब धर्मदास जी ने पूछा है परमात्मा ये है क्या, फिर ये सांग है। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ये ऐसी व्यवस्था है, ये कसाई है, ये काल यहाँ का जो भगवान है जिसको ब्रह्म कहते हैं, सर्वपुरुष जिसको कहते हैं, सर्वपुरुष सर्वब्रह्म भी इसी को कहते हैं, ज्योति निरंजन इसी का नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, न पहले कभी काल कहा गीता जी ज्ञान से अलग, ना बाद में कभी अपने आप को काल कहा। वो काल बोल रहा था भूत की तरफ उसमें प्रवेश करके प्रेत मत, मैं काल हूं और ये देख मेरा ये रूप है, 1000 भुजा 1000 पैर 1000 फंड दिखाई दिया, कलजा पाट दिया इसे योद्धा का। भगवान तो भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, अरीसा भगवान होता है, विश्वास था तू ही मर जा गीता जिस आप अर्जुन ने दिखाया कि मेरा यू असली रूप है, तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते, देखते आत्मा प्रसन्न हो, शीतल स्वभाव हो, बोलने की विनम्रता हो, प्यार मिले, दुख ना हो, सुखी सुख हो, इसलिए भगवान को ढूंढते। ऋषि बुढ़े ने देखते कलजा पाट दिया, पता उसने के गड्ढा इसे भगवान ने, तो वो कहे ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूं और हम इसकी पूजा किया करते थे। और इसकी पूजा करने वालों को महर्षि कहा करते थे, बड़े विद्वान है। तो परमात्मा ने बताया काल है भाई, ये पहला तो सरूमति साधी खजन भगवान पड़या है, और जब इसका असली चेहरा सामने आता है, इसे करतूत देखा तो काल है, जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधाएं करता है, चरागाह बनाता है और उसके चारों तरफ हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस तैयार करता है, ऊपर छाया बनाता है, शेड बनाता है उनके लिए, पानी का तालाब बनाता है, उनको पानी पिला कर लाता है, चराता है, उनके ऊपर का हाथ उठ फेरे उनमें लाड, तो वो देखता है जब कसाई आता है पशुओं के अंदर अपने, और वो देखता है से हाथ ला करके, वो तो नहीं देखे यू कै किलो का हो गया, कितना मांस बना इसमें, और वो बोड़ी आत्मा नहीं समझे बकरे और बकरियां कि हमारा कितना दयालु स्वामी है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, ये हमारा प्यारा है, उनको प्यारा समझकर उसको चाटते हैं, उसके ऊपर पैर फैलाते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, और वो इन्हों देखे ये कितने किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, उधर तो सुविधा देता है जब तो वो अच्छा लगे, और फिर जब आ जा दो चार बकरों की डिमांड, वो न देखता किसका बेटा जाएगा, किसकी माँ जाएगी, किसकी बुआ कटेगी, वो तो लट्ठी लेकर आके ले नारी काट देता मोटे मोटे छाट। तो ऐसी व्यवस्था इस काल के लोक में हमारी श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पुराण जो है श्री विष्णु पुराण जब शुरू होती है इसमें काल भी विष्णु रूप धारण कर लेता है, ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लेता है, शिव जी का भी रूप धारण कर लेता है, और साधक जन जो साधना करते हैं ओम नाम के जापते किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप, वो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि ये जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण तमगुण सतगुण यही है ये भगवान ओम नाम के जाप से जो धमे दिखाई देता है, ऐसे ये न अभी तक सारी बात बिगाड़ रखी थी। तो अब ये क्या कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण स्टार्ट होती है ये उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ये स्पष्ट करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 के ये प्रश्न नंबर 4 पर श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 इसके मंत्र नंबर 15 में श्लोक नंबर 15 में हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब ये अनुवाद करता और ये इसके वक्ता भी अनभिज थे, अज्ञानी थे, इन्होंने कोशिश की है डिफाइन कुछ करने की पर नहीं कर पाए। यहां हे द्विज ये परब्रह्म कह है, परब्रह्म कह है इस काल में विष्णु ने, ये विष्णु रूप में दर्शन देते। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है और इसका मंत्र नंबर 27 में, 15 आपने पढ़ा, 27 पढ़ा। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विष्णु रूप, ब्रह्मा रूप या शिव रूप धारण करता है, और दुर्गा को पार्वती, ब्रह्मा के साथ सावित्री रूप में, विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शंकर के साथ पार्वती रूप में रखता है। तो तब तो ये इन रूपों में रहता है, विष्णु रूप लक्ष्मी के साथ विष्णु रूप रहता है, और जब दुर्गा को छोड़ देता है तो ये अपने किस में ब्रह्मांड में जाकर के अपने वास्तविक काल रूप में विराजमान हो जाता है। यहां लिखा है कि मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुर्गा से पृथक स्थित हो जाने पर ये किस में ब्रह्मांड में चला जाता है, भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। और यहां इसी के बारे में जिक्र है ये कि हे द्विज, परब्रह्म यानी इस काल का, विष्णु कहो चाहे काल, महाविष्णु कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म है ये, परब्रह्म गलत लिखा है। हे द्विज, उस परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, साकार और निराकार जो ना दिखता और किसी रूप में आ जाता है, और परंतु तथा काल उसका परम रूप है। प्रथम पुरतो उसका भगवान जैसा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखा है, फर्स्ट इंप्रेशन तो देखे भाई भगवान ने बड़ी सुविधा दे रखी है, बड़े देखो झरने बह रहे हैं, कि तो बाग बगीचे खड़े हैं, है? और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, नीचे जल है, पानी मीठा है, तो यू देखा तो यू भगवान ने पड़िया है, परमात्मा दिखे। और जब यू हमारी दुर्गति कर रहा, गैस काट रखी, किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, कैंसर होगी, किसी को कुछ दुख, कहीं ओले पड़ गए, सिर फूट गए, फलट मर खत्म हो गए, नो देखा तो यू इसका असली रूप तो यू है, ये काल है। तो यहां बताया है कि जैसे कसाई बकरे पालते हैं, उन बकरों को वो सुविधा देता तो लगा है तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि शाम में तीन चारा निकाल ले गए, एक कड़च कर दिए। तो अभी तक हमारी सती थी, हमारी बुद्धि यहां सेट थी, हमें पता ही नहीं था हम करें तो करें क्या, कहां जाऊं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लिखे हुए या सांगी और बदनी और इन फिल्मी कलाकारों के बनाए हुए गाने नहीं है, ये बहुत ही अच्छा विधान प्रभु का दिया। इसमें एक एक शब्द का बहुत अलग से विश्लेषण होता है, बहुत महत्व गुड़ रहस्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारते, वास्तविक भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर वाले सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, अच्छी आत्मा कहते हैं, जो उत्तिष्ट आत्मा है वास्तव, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। अब कर्ण तो परमात्मा हम इसने भी कहे हैं, लेकिन इसको परमात्मा कह जरूर है, पर गुण तक होना परमात्मा वाले, परम आत्मा वाले, श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा, सिटी तक भी ना मारे, केवल सुख दे और दुख ना दे, उसको परमात्मा कहती। तो वो सतलोक में सतपुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा इससे एक और बात समझ में आओगी, अपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में क्या व्याख्या की है, कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, और इसकी तीनों गुण रूप शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अवयवों को, सभी पार्ट्स ऑफ द टेरी के जो बता देगा भिन्न भिन्न के जड़ कौन भगवान है, तना किसे कहते हैं और डार किसे कहते हैं और शाखा किसे कहते हैं और पत्ते क्या है। सह वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके साधना करता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है, यानी अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानता है। यानी जो भी कोई क्रिया कर रहा है वो उन्होंने सोचा या बढ़िया है मुझे सुख देगी, अगर उसको ये पता हो ये सुख नहीं देगी, पाप नाशक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुरंत त्याग दे वो। तो वो अपनी अपनी साधनाओं को वो अपनी अच्छी मानकर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की विस्तृत जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी का है कि इस तरह की विस्तृत जानकारी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सचिदानंद घन ब्रह्म मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ होता है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, उसके अपने मुख से बोली गई वाणी में वो विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे, फिर जैसे वो बतावे ऐसे कर। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसका जानकारी दे दी, पहचान बता दी कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सब अवयवों के साथ साथ भिन्न भिन्न बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। पुणात्मा ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़े हुए बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे। इसलिए ये दास एक टीचर बनाया परमात्मा ने, और टीचर का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिलेबस से ही जानकारी दे, मनमुखी बाहर की कोई कथा ना सुनावे। अभी तक हमारे को सिलेबस का नाम लेकर के आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कराई गई है, इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिची क्या है। ये जन्मते हैं, इनको हम अजरों अमर कहा करते थे, इनका इतिहास, इनकी जीवनी बताती है कि तो नासवान है, इनके माता पिता भी है, हमें बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इसे सिद्ध है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने, तो अब ये शीघ्र ही बहुत विस्तार में हो जाएगा अपना ये मार्ग और सभी को सुख होगा। इसी मार्ग से ये सब हमारे जो विकार दूर होंगे, माया जोड़न की होड़ जो लगी हुई है जिसके कारण अदंधे हो लिए हम, आगा पीछा कुछ नहीं देख रहे, इससे वो शांत होगा एकदम, जैसे आग के ऊपर पानी गिर जाता है। इस ज्ञान से पूरे विश्व में इतनी शांति बन जाएगी और इस ज्ञान के बिना और कोई विकल्प ही नहीं है। तीसरी इस दास का उद्देश्य है कि आपको इतना रंग दूं कि चाहे आपके सामने कोई आग खड़ा हो जाए, आप इस ज्ञान में मारने उसे हार नहीं मान सकते, उसको झुका के छोड़ोगे वो मानो चाहे ना मानो, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको मानना भी पड़ेगा।

सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तो

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099

0: यानि 4037771099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीच इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी अकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 start या विजिट करो www

दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ।

0: मुख रंग जलू लिया मेरा मान तनो पिना जन नानक मुसक खोल लिया सब जन्म तन तना जन नानक मुसक खोल लिया
1: ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरु प्रसाद आशा महला पहला वार श्लोका नाथ सोगी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दहारी सदवा दिल मान से देवते की करतना की वार महला दूजा जे सो चंदा अग सूर चढ़े हजार ते चरण हो दया गुर बिन कोर
0: मल्ला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआर ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटे कहो नानक सो नाम फलिए बुलिए बपड़े ही तन वेंच सवा बौड़ी आपने आप साजियो आपने रखियो ना हो तो ही कुदरत साजी है कार्य आसन मिठो चाओ दात करता आप तू कुस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ कार्य आसन मिठो चाओ मिठो चाओ मिठो चाओ
1: और ये अपने अब साजी हो अपने रखियो ना हो दोई कुदरत साजी करास मिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे देह लैसे जिंद कवाओ कार्य सर ठो चाओ।

0: जीवन मुक्त सुहाखिया जीवन मुक्त सुहाखिया मर जीव मरिया मर जीव मरिया नानक सतगुर मेल हरे जग तुतर दरिया जग तुतर दरिया
1: शोक महला पहला सच्चे तेरे खान सच्चे ब्रह्मन सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिव सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच
2: महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा ने चलता वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
1: जब सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए एक ना हुक्म करे विनाश एक ना बाणी गढ़ ले एक ना माया बिच निवास ए पी आख न जापही जे किसाने रास नानक गुरमुख जानिए
0: जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै एक ना वै धर्म बहालिया उथे सच्चे सच ने बड़ै चुण वट कड़े जज मालिया था न पाइण घोड़िया
1: पौड़ी नानक जी उपाय क्या लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच ही सच ने बड़ा चिन वक कड़े जजमालिया हाउ ना पाइन कुड़िया मुह काले दो जग चालिया तेरे नाये तैसे जन गए हार गए से ठगन वालिया लिख नावे धर्म बहालिया लिख नावे धर्म बहालिया
0: हम मूरख

0: सहमत समझाए
1: रंग दास हर कांडिया हर पैजर खाए पैजर
0: श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग प्याजा सुख कामना होई तू करता करना मैं नहीं जहां करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो जात में जो ज्योति में जाता बिल्कुल भरपूर रहा तू सच्चा सहसूस वालो जिन की तीसो पार पिया कहो नान कर देगी बात जो कुछ करना सो कर रहा
1: तुझा जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है खत्री सबदंग सूर सबदंग सूदर सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताई आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
0: तुम पे पता जर रहे जर बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदम रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया हो गुणी का
1: साध न मारिए जे हकल कहलना देवे हो ना उपचारिये सिकल न खेडिये जित दर गए गया हारिये पढ़िया त्यो मिया विचार अगे विचारिये वो चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे
2: ਗੁਣਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲਨਾ ਤੇ

0: संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पगा ए आई है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुरु सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण करन निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन्यागर गहर गंभीर अथा अत बड सो पर सदा सब विदित नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी त्यां तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णं सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं।
2: नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज त्यों लोग परगासे देखत दस पड़क ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा तुलबत आलस मूझ कुसुम सुभासे विद्यमान गुराप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास तारे ओ संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रेदर सिद्ध न छोटे साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कहो तथ ताहे कहां परवाह कहूं।

0: जाकमुन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूठ भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गुर रामदास को मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जूतन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जूखन कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भत जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो
1: जेह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद नवनिध पावे सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो जेह सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास का गुर रामदास
2: नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन सब

0: बढ़ाई, मोह मल बेवस कियो, काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड, लोभ अपमान स्यों झाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सुमन, भव सागर बंधियो, सिख तारे सो प्रसन्न, सिर आत पत सचो तखत, जोग भोग संजुत बल, गुर रामदास सच सल पण, तू अटल राज अपग दल।
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुरे सुर, गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे, उन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे, तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख, तरै एक नाम लग तजो रस अन रे, दास बेंत कह नाम गुरमुख लह, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत।

0: राखी अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते है मिलंत जाम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई
1: सो कहौ टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसमदि नूर अर सहु गुर सहु चटिया तुद डिठे सच्ची पात सा माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा बिन सत गुर सेवे जीय के बंदना विच हौ मैं करम कमाहे बिन सत गुर सेवे ठौर न पावही मार जम्मह आवह जाहे बिन सत गुर सेवे जीय के बंदना विच हौ मैं करम कमाहे बिन सत गुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सत गुर सेवे फिक्का बोलना नाम न वसै मन आई नाम न वसै मन माहि नानक बिन सत गुर सेवे जमपुर बद्दे मारियन मोह काल उठ जाहि महला पहला जा लो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पत रहै पौड़ी हर इको दाता सेवी है।

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाइया, नानक तिन विटहौ वारिया, जिन अन दिन हिरदै हर नाम त्याई, जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर गहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुवे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर गहया पर पूरे बिनवंत

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सुमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो। सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है। कर नौ निधि आवै ताई। सब थाई हुई सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां। चौहां साहिब जादियां। चालियां मुकतियां। हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही। देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया। चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नाही हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान तर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा ताखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरियायत देग तेग फातहे विरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु।

गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो, श्री ननकाना साहिब आते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार।

किछ हाथ के सैद है किछ नहीं, किछ हाथ के सैद है किछ नहीं। सब चले चलाए जिंदु मिले प्यारे से दुध मिले, जो हर मन पाए जनानक सतगुर भे।

दिन हर रखन हर राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यार जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट जग

0: वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह फतेह, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।
1: पौड़ी वडेकियां वड्याइयां किछ कहना कह न जाए, सोगता का दर करीम दे जियार विच संभाहे, साई कर कमावनी तोर छोटी तने पाए, नानके की बाहरी हो दूजी नहीं जाए, सो करे जो से रजाए, सो करे

0: गुजर सर्प कला पर पूर दिस जत कदा नानक दा सुनदा तुद आगे बिनु बता
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपाहो प्रकाश अमितोज कह जह कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथै कवन करम नाम बरनत सुमत सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अछल संसारी जिन भगत भव जल तारी सिमरह सोई नाम प्रदान तित नाम रसिक नानक लहना थपियो जीन श्रब सिद्धि काव्य जन कलस बुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्त्रिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षण पुबयार पश्चम जय जय कार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायाओ उलट गंग पश्चम तरिया सोई नाम अशल भगत है भाव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया छुटत परवाह अमय अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह जन मज्जन पोब जिनह सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शबद मात्र ते उधर तरे काव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे ना रोगं ना सोगं न जातं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं
अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे सुकाहौ टल गोर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना विच हाउ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे जी के बंदना विच हाउ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम न वसै मन माहे नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्दे मारियन मोह काल उठ जाहे महला पहला जा लो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पत रहै पौड़ी

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विट हौ वारिया, जिन अन दिन हिरदै हर नाम त्याई है। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विट हौ वारिया, जिन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

मरण मूर्त पुछिया पुछी थित न वार। ओ मौत ये नहीं पुछदी बे दस किड़े दिन किड़े महीने किड़े समय तेनू लजावा। नानक किसनू आखिए विण पुछिया ही लै जाए। ओ जदों आउंदी है बगैर पुछण तो ही लै जांदी है। गुरु नानक साहिब जी महाराज की समझा रहे हैं।

री दिंदड़िए मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। हर वेले सिमरन कर ये शरीरा मेरे आ इस जग में आ के क्या तुद कर्म कमाया। सतगुरु सानू पूछ रहे ने दुनिया विच आया है कोई चंगा कर्म भी कीता है। हां भई चंगा कर्म कर एहो जया काम कर ए दुनिया तेनू सदा चिर याद करे। चले ते सब ने जाना है क्योंकि वो मौत आन लगियां किसे कोलों पुछदी नहीं।

के चले जाना है। आखरियां पंक्तियां कीर्तन समा समाप्त है, हर वेले तैयारी रख। फिर जान वेले रोण धोण क्यों घोड़ियां करता है। किसे सफर नू जाना है ना, ठंडे इलाके विच जाना है ते गर्म कपड़े गर्म समान बांध लेंदा है। गर्म इलाके विच जाना है ते नाल ठंडे सादे कपड़े लै लेंदा है। जेहो जी जगह जाना ओहो जी तैयारी, ते क्यों तैनू भुल गया है निरंकार दे देश भी जाना है। उन्हें एक दिन बुला लेना है, उथे दे भी तैयारी रख। उथे की जाना है, उथे सिमरन जाना है, प्रभु दी बंदगी जानी है, चंगियाईयां जानियां ने। इसे लिए उन्हें दसना नहीं, समा नहीं देना भई तैनू दो महीने की मोहलत दिती ते तैयारी कर ला, नहीं सदा ही तैयारी रख। उन्हें बुलावा भेज देना है।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

0: क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक।

0: मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: सतगुरु कृपा करन समुची सिख कौम उत्ते। सतगुरु जी तरस कृपा करके शरदा प्रेम भावना बख्शिश करन, क्योंकि हुण ना तां प्रचार की कमी है ना प्रचारकां की कमी है, साध संगत प्रेम की कमी है। सतगुरु कृपा करन साडे अंदर प्रेम पैदा होवे, शरदा प्यार पैदा होवे। जिहड़े असीं तर्क करी जांदे नहीं जी गुरु ही संत है, गुरु वास्ते संत शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो गुरु संत नहीं है, शब्द गुरु वास्ते संत वरते है, भाग हुआ गुरसंत मिलाया। पर साध संगत गुरु की हस्ती बहुत वड्डी है, गुरु तो एक दृष्टि किसी शरीर धारी ते पल, एको दृष्टि नाल कोई भी शरीर धारी मनुख संत हो सकता है। ये गुरु विच इन्नी वड्डी पावर है, गुरु नू एवें ना समझिए। पातशाह ने कहा पूरा गुर, शब्द तुहानू याद है, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिख है, होए संत। गुरु इको ही अमृत दृष्टि पा दे उन्हूं संत कर दें। सतगुरु कृपा करन साडे अंदर भावना प्रेम जगे, इतफाक सतगुरु बख्शिश करन। गुरमुख प्यारियां दा धन्नवाद।
1: कैलगरीच इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East Calgary,

तजमान सखी तजमान सखी मत आपने प्रीतम भाव है। सखी आओ सखी वास आओ सखी असी पिर का मंगल गाव है। तजमान सखी तजमान सखी मत आपने प्रीतम भाव है।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: अब देखिएगा गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। ये 25वां श्लोक है। ये क्या बताते हैं कि दूसरे अप्रे माने अन्य योगीजन, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान का ही, धार्मिक क्रिया का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं। योग माने धार्मिक क्रियाएं। अन्य योगीजन ब्रह्म अग्नो परब्रह्म नहीं, इस ब्रह्म की कठिन साधना करके उस अग्नि के अंदर अर्थात उसमें कष्ट उठाते हैं, यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 26 में लिखा है कि अन्य योगी जन यानी कुछ भक्त श्रोत्र आंख कान मूंद के संयम रूप करते हैं, आंख कान मूंद करके बैठ जाओ, उसमें भी हवन माने उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ अन्य योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं यानी साधना करते हैं। 27 में लिखा है दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने कुछ ऐसे करते हैं कि श्वास उश्वास बाहर द्वारा अंदर द्वारा इसको देखते रहो, बस इतना ही काफी है, ऐसी क्रिया बताते और करते हैं। दूसरे 28 में और कई द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जो धर्म जो कितना भंडारा कर दिया, कितना गौशाला धर्मशाला बनवा दी, इस तरह के जो द्रव्य यानी धन से होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठान वो करवाते हैं, और कुछ तपस्या ही करते रहते हैं, और कुछ दूसरे कितने ही ये योग रूप करने वाले हैं, ये योगासन वगैरह करते रहते हैं, योगासन जो बोलते हैं वो, और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। 29 और 30 में कहा है दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, ये श्वास उश्वास करके सूक्ष्म यानी प्राणायाम करते रहते हैं, और कुछ योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, ये हठ योग करके श्वास को रोक रखकर सूक्ष्म स्थिति बना देते हैं अपने श्वासों की। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को ये प्राणायाम आदि करते रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी इन साधनों से समझते हैं कि हमारा पाप नाश हो रहे हैं, सही साधना कर रहे हैं। 31 में ये अर्थ का अर्थ है यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक है। सनातन परम ब्रह्म सनातन ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म माने ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आप संस्कृत पढ़िए, इन ठेका ले रखा था वो जानेगा, ये परम परब्रह्म कर दिया नहीं, सनातनम ब्रह्म यान्ति, वो तत्ब्रह्म कहो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको प्राप्त होते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। ये आगे दिखाएंगे गीता जी में, इसका तीसरे अध्याय में आपको दिखाएंगे ये क्या अर्थ बनता है, यानी इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल साधना जो करते हैं। सनातन ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो साधना करते ही नहीं प्राप्त होते, और जो यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यानी जो भक्ति करते ही नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते, तो मनुष्य लोक में भी सुख नहीं तो परलोक में कैसे सुखदायक हो सकता है। ये तो 31 तक हो गया। अब 32 में स्पष्ट किया है अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ बहुविधा यज्ञ बहुत प्रकार के यज्ञ ब्राह्मण मुखे ये शब्द है जायने गड़बड़ कर दी ब्राह्मण मुखे यहां ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद की मुखे माने वाणी में अरे वेद की वाणी क्या होती वेद तो आप पे वाणी है वो यहां है ब्राह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने अपने मुख्य वाणी से अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में अब ब्राह्मण का अर्थ क्लियर करना जैसे अभी आपने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो ब्राह्मण कार देखा था वो बड़ा भगवान होता है तो वहां आयु कैलकुलेशन है तो अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते क्योंकि उसका आयु का विश्लेषण है उसकी उम्र का है और यहां केवल ब्राह्मण ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में आपको दिखाते हैं ये है 17वां अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और ये 23वां श्लोक है ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ओम तत् सत् इति निर्देश है यह निर्देश है यानी फाइनल फैसला है नथिंग एल्स निर्देश स्पष्ट लिख दिया ये डायरेक्शन है इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखा गीता ज्ञानदाता ने ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मण है ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की त्रिविध समर्थ है तीन प्रकार इस ओम तत् सत् का तीन मंत्र के जाप का निर्देश है और इसको तीन विधि से ही सेवन किया जाता है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरः विद्वान पुरुष तत्वदर्शी संत इसी आधार से इसी ज्ञान के आधार से वेदा माने ज्ञान के आधार से अपनी साधना किया करते हैं यहां देखो इन्हीं के द्वारा अनुवाद ओम ओम तत् तत् सत् सत् ओम तत् सत् ऐसे ही है तीन प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का ये बिल्कुल सही कहा सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है निर्देश माने नाम नहीं इस ब्रह्म का सचिदानंद ग्रह के मंत्र का यो निर्देश कहा गया कि यही है एक निर्देश यही आदेश है फाइनल फैसला है अब यहां ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म ये देखना तो अब हम यही आ जाते हैं वापस अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर फिर 32 हम देखते हैं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक क्रियाएं ब्रह्मण मुखे यहां लिख दे हम सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी मुख से उच्चारित अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए ओह उन सब को तू कर्म जान विधि मन इमान इंद्रियां और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान यानी कर्म जान का अर्थ है काम करते करते जो साधना हम हठ योग ना करके अपना सिंपल वे में यानी कर्म योग करते हुए कर्म योग के आधार छठ योग से नहीं करने से होने वाले संपन्न होने वाली जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहे गए उसके द्वारा उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा यानी कर्मों के बंधन से जन्म मृत्यु के संकट झंझट से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा अब यहां इस चौथे अध्याय का 32वां आपने पढ़ा 33 में स्पष्ट किया है इसमें कुछ और व्याख्या बताई है कि जैसे श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते इसका अर्थ ये है कि कोई भी कार्य अनुष्ठान शुरू करने से पहले उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए इसलिए ज्ञान यज्ञ इस दर्व अंधाधुंध धन लाणते वो ज्ञान यज्ञ से आधार से फिर करे हे परंतम दर्व में यज्ञ की अपेक्षा हे परंतम अर्जुन दर्व में यानी बेमतलब धन लाण की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है यानी पहले न्यू तो देख ले तू जो कोई पैसा दो पैसे लाण जा रहे कि तो मंदिर का लठ गुडवा दे क्या फायदा उदन लाने का वो पाप और हो गया तो किसी भी काम के करने से पहले ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है यावन मात्र यानी सारे संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में दर्वे में यज्ञ से यानी धार्मिक क्रियाएं जो धन लाके करते हैं, कोई कितना भंडारे करवा देता है, कितना कोई घाट बनवा देता है, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, कितना मंदिर का लठ कटवा दिया, मंदिर बनवा दिया, तो कहते ये जो अंधाधु बिना ज्ञान के तुम धन व्यय कर रहे हो, इससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तत्व ज्ञान जो संप्रचार किया जा रहा है, पहले ज्ञान यज्ञ उस ज्ञान ने समझो और उस ज्ञान के अंदर फिर ये अन्य जो सब कर्म उसमें समाप्त हो जाते हैं, जो तुम इधर उधर अनुष्ठान करते हो और तरह की क्रियाएं करते हो वो उस तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे जो सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी के आधार से ज्ञान प्राप्त होगा। फिर वो ज्ञान कहाँ मिलेगा, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 से लेकर 33 तक आपको विश्लेषण कर दिया, इसका अनुवाद कर दिया। अब 34 में निर्णय दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हुआ कि वो ज्ञान भी गीता और वेदों से न्यारा है, उसका ज्ञान भी उस ज्ञान के बारे में जानकारी भी किसी तत्वदर्शी संत को ही है, आम संत को नहीं है। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, लंबा लेट के और विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से, अपने आत्माओं जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं पड़ोस में और उससे कोई वस्तु उधारी मांगना चाहते हैं, तो पहले जाओगे, औपचारिकता करोगे, प्यार से बैठोगे, बतलाओगे, कुशल मंगल पूछोगे, फिर उस वस्तु की डिमांड करोगे, तो आपकी विनम्रता शिष्टाचार को देखकर वो व्यक्ति अपनी वस्तु को आपको दे देगा। अगर आप जाते सिद्धे नोगे वो वस्तु देनी है कि नहीं देनी तने, तो होगी तो भी नट जाएगा, तक मारी खराब हो रही है, जा अपना काम कर। तो हमने लेना एक अनमोल मार्ग भगवान से, परमात्मा का मार्ग प्राप्त करना संत से, तो उसके लिए बहुत ही विनम्रता, निष्कपटता, क्योंकि वह वस्तु फिर काम भी उससे करेगी, छल कपट से नहीं, विनम्र भाव से समर्पित होकर के फिर उससे प्रार्थना करे, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आगे 35 में कमाल कर रखा है, जिसको जानकर, उस तत्व ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को, भूतों को, प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, सचिदानंद नहीं मई मने मुझ में देखेगा। फिर आगे लिखा है 36 में, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सारा बता, जैसे ईंधन, कितना ईंधन उसमें अग्नि भस्म करके राख कर देती है। अब इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि जब तू तत्वदर्शी संत के पास जाएगा, तत्व ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा, फिर पहले तो तू अपने आप में देखेगा मैं क्यों फंस गया इस काल का, और फिर तू नो देखेगा ये सब प्राणी मेरे अंदर है, मेरे अंतर्गत आएगी, सारे काल का फंस रहे हैं, फिर तेरी गिगी बन जाएगी, तुझे फिर सही पता लगेगा, फिर तू भक्ति कर लेगा, अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वो क्या बताएगा? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये, पातरोप संसार। वो तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के बारे में? ये है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, टरी, ये स्थिति समझ। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है, ये तना, और निरंजन वाकी डारे, ये ब्रह्म है, सर पुरुष, तीनों देवा शाखा है ये, पातरोप संसार। ये परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन काल वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पातरोप संसार। ओहो, गीता जी का 1 से 4 ये स्पष्ट कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के बारे में विभाग सहित बताएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये जड़ छोड़ दो नीचे, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में को क्लियर करने के लिए वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसके लिए ये सब भूमिका बनाई जा रही है। ये तना है, ये अक्षर पुरुष है, और ये छर पुरुष उस ये डार है, ज्योति निरंजन है, इसके आगे तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम फिर आगे आप और हम जी यहां पात रूप संसार है। अब इस संसार रूपी इस वृक्ष को आहार कहां से मिलता है, इसकी परवरिश कहां से होती है सभी की, इसकी भी, इस यानी ब्रह्म अक्षर पुरुष की भी, सर पुरुष की भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी, और हमारी भी, तीनों लोकों में प्रवेश करके ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो छुपा हुआ है, जो प्रोक्ष है, ये है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ये जड़ रूपी अक्षर ब्रह्म। अब इसको दूसरे शब्दों में, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये कबीर देव है, कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब, ये वो परमात्मा है। अक्षर पुरुष तो ये हो गया, ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीताजी अध्याय नंबर 15 के, गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसका उत्तर दिया है 1 के प्रश्न का, तू परम अक्षर ब्रह्म है, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के, ये है वो जड़ रूपी परमात्मा। अब इससे सभी को आहार मिलता है, ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इसका भी धारण पोषण जड़ से, अक्षर पुरुष का भी, छर पुरुष का, ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूपी शाखाओं का भी, और हम सभी का भी, ये उसी परमात्मा से सबका धारण पोषण होता है। अपने आत्माओं, ये वो सदग्रंथ है जिसको पवित्र हिंदू धर्म के पुण्य आत्माएं शिरोधार्य मानते हैं, और वास्तव में ये ग्रंथ बहुत ही उत्तम और निर्णायक ज्ञान युक्त है, सिस्टेमेटिकली ज्ञान है इसके अंदर। ये वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है, क्योंकि ये कोड वर्ड ज्यादा है गीता जी में, इसको हमने और सदग्रंथों के सहयोग से इसका अनुवाद करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी है, ये सिद्ध करने के लिए आप पहले श्री देवी भागवत देखिएगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु भी होती है, इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका काल है, ज्योति निर्गुण है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये संपादक अनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कुछ ही पंक्तियों में। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। अब यहां ये भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हैं, स्तुति करें, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद, हमारा आविर्भाव मान जन्म तिरोभाव मान मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, हम नाशवान है, जन्मते और मरते हैं, इसका अर्थ ये है केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा को कहते हैं, और ये गीता जी में आपके काम आएगा जब वहां इनकी उत्पत्ति बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करनी हो तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी केवल नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते, जो निर्धारित आपका दिया हुआ है संस्कार उसी को ही ये कार्यवन करवा सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। यहां भी स्पष्ट किया कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान हुआ, यहां स्पष्ट ही कर दिया कि तीनों गुणों से हमारी उत्पत्ति हुई है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। इसमें क्या है कि अनुवादकर्ताओं ने, क्योंकि ये केवल हिंदी है, इसमें अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, और ये संस्कृत सहित है श्री देवी भागवत इसमें, क्योंकि हम शिक्षा का भी हमें यही लाभ है कि हम इन सदग्रंथों को स्वयं भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास्टर की है, ये सृष्टि रचना रूपी जो ज्ञान है, सृष्टि की रचना ये मास्टर की है, ये हमें परमात्मा ने दे दी, तो सब सदग्रंथ आसानी से समझे जा सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें

0: अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ये है श्री देवी भागवत हिंदी टीका सहित, संस्कृत भी साथ है इसमें, भाग एक, ये दो भागों में बना रखा है। ये कहां से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से। और यहां देखना इसके तीसरे स्कंद में स्पष्ट है, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है अध्याय नंबर 5 का प्रश्न नंबर 11 पर तीसरे स्कंद में, और ये भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में, ये हिंदी है। 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। शंकर भगवान कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो, यानी आप हमारे पर दयालु हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? अब शंकर जी भी नहीं हो गए, आप एक तरफ तक हो, आप मुझे बहुत प्यारे हो पुत्रो, और फिर इसे जुलम हमसे करवा रहे हो। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, उत्पन्न किया है, लिखना चाहिए। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं? अब यहां संस्कृत भी हम देखेंगे। अब 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, क्यों पैदा कर दिया, क्या तमोगुण है? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया, उत्पन्न किया? और सुवित है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया? इससे सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को और 16 और 17 को समझना अति आसान हो जाएगा। एक ये पहचान होगी कि तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं, फिर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आप जी को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 श्लोक आपके रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की जानकारी जब तक हमें सही नहीं होगी, तो हम कभी भी डगमग हो जाएंगे और अपना काम बिगाड़ लेंगे। दास का उद्देश्य है कि आप जी को पहले इन प्रमाणों के साथ साथ दिखा दिखा कर इतना दृढ़ कर दूं कि विश्व का कोई व्यक्ति आपको यहां से दूर ना कर सके, भगवान से, परमात्मा कबीर जी से। अन्यथा परमात्मा कबीर जी की वाणी में, गरीबदास साहब जी की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में ऐसे बहुत सी प्यारी प्यारी व्याख्याएं हैं, वो भी सारा दिन रात सुनाई जा सकती हैं आपको, लेकिन वो मीठी गोली है, क्योंकि कान का विषय है मीठी, यानी गाने बजाने ढंग से, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको यथार्थ ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये दास भी कभी गाकर सुनाता है, वो तो ऐसे है जैसे पहली के बालक को, पहली प्रथम कक्षा के बच्चे को कहते हैं, बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, ये गाना नहीं है, ये उसको तरीका है समझाने का। और जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, बड़ी क्लासेस में हो जाता है, फिर उसने रुक के मार कर आवाज लगा कर निपटनी पड़ती, फिर तो मन मन में घोटे है। तो ऐसे ही आप जी को हर तरह, क्योंकि यहाँ प्रथम कक्षा के बच्चे भी आज भी आए हैं, यानी कई वर्ष से सत्संग सुनते आ रहे हैं, उनको भी, यानी सबका समावेश एक ही सत्संग में दास कोशिश करता है, मिला जुला सा मिश्रण सबका कर दूं। क्योंकि इस काल के जाल में और ये कलियुग के दौर में काल ने इतनी फिरकी बना रखी है, सबकी घिघी बांध रखी है, किसी को समय नहीं एक मिनट का भी, और चाहे रास्ते में कितना एक मिनट में कड़े चो जाए,

0: लेकिन सत्संग का टाइम कतई नहीं रह रहा। ये तो बहुत पुण्यात्मा और परमात्मा जिन पर अति कृपा करते हैं, अति प्रसन्न है, वही यहां समय निकाल कर आ पाते हैं और वही जमानत करवा कर लाता आपकी। परमात्मा कबीर जी, आप जी काल की कैद में हैं, अपने कर्मों का दंड भोग रहे हो। ये जेल बहुत खुला है, इसके बंधन और तरह के हैं, तो उस काल के बंधन से आपका जो जमानत करवाता है परमात्मा ही कुछ समय के लिए पैरोल पर आपको यहां लाता है और फिर कहता भी 2 दिन छोड़ दे इसने, फिर तेरे पास वापस छोड़ दूंगा। तो ऐसे आप जी के ऊपर जो कृपा है परमात्मा की, आपकी छुट्टी करवा के लाते हैं और फिर ये ज्ञान सुनवाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आपकी इतनी कमाई बढ़ जाएगी, हर तरह की व्यवस्था परमात्मा घर पर करने लग जाएगा। तो जितना अधिक समय आपको मिलेगा वो परमात्मा कबीर जी की कृपा ही होगी, अन्यथा इधर झांक भी नहीं सकता प्राणी। रेल बना रखी है सबकी, भागा दौड़ी भागा दौड़ी, 1 मिनट में खत्म, वहीं रह जा सारा दरिया दराया। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4, अथ पंच दसो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अध्य शाखम नीचे को, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम अविनाशी, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता ये अवे अविनाशी, और छंदासी यस्य प्रणानी, छंदासी माने उसके विभाग हैं पत्ते आदि, और ये तम वेद जो उस अज्ञान अंधकार में उस ज्ञान को समझता है, जो अभी तक अज्ञान अंधकार में फंसा पड़ा था तत्व ज्ञान को, सैतम वेद जो इनको समझता है जानता है, सै वेदवित वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला है, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर को, तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल समझो, जड़ तो वो समझो, और अधे साखम इसने गलत अनुवाद किया है, अधे असाखम का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, इसी के अंदर देखिएगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में, दो जगह अधय, अधय माने नीचे है, इन्हीं से लेंगे हम, ये है अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, तो यहां भी अधय माने हम नीचे ही लिख रहे हैं, ये तो विचलित हो जाते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो ये जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, अध शाखम नीचे को शाखा वाले, इस पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते इन वेद लिखा नहीं, इसका अर्थ होता है जो भिन्न भिन्न विभाग हैं, चलो हम इनके अपना जो निष्कर्ष लेते हैं, और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित जड़ते लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, सै वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला सै है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। दूसरे में क्या लिखा है कि अधय च ऊर्ध्व ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला अधय च मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, इसका अर्थ है इस संसार की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी हुई ये जल से नहीं बढ़ी हुई विषय परवाला, यानी यह विषय विकारों की शाखाएं हैं, विषय भोग रूप कोपल वाली देवतर शाखा, विषय परवाला यानी विषय विकारों की ये समझो शाखाएं हैं, शाखा माने शाखाएं समझो, बस इतना ही और नहीं। अध नीचे और ऊपर ये सर्वत्र नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई है, पृथ्वी लोक प्रति ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्गलोक में नीचे पाताल लोक में, इन तीनों लोकों पर इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक एक विभाग है, रजगुण ब्रह्मा जी, विष्णु जी का सत, शिव जी का तमगुण, यानी ऊपर और नीचे ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है, मूलानी माने मुख्य कारण है, कर्मों के बंधन में यही बांध कर रखते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें, और नीचे और ऊपर ये व्याप्त है, सब नीचे और ऊपर सभी लोगों में नहीं केवल व्याप्त हो रही है। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं अब तेरे मेरे डिस्कशन में, मैं यथार्थ रूप से संसार रूपी वृक्ष के विषय में, ब्रह्मांडों की रचना के विषय में परिचित नहीं हूं। इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, यानी मुझे पता नहीं इसका। इसलिए इस सो विरोध मूलम इस अति दृढ़ मूल वाले यानी जो सतलोक है, जड़ रूपी जो स्थान है परमात्मा है, वो तो अति दृढ़ है, वो अविनाशी है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ यानी संसार रूपी ब्रह्मांडों की रचना को दृढ़ असंग शस्त्रेण इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उस ज्ञान को जीव इस गुत्थी को समझ कर काट कर, अब 15वें अध्याय का 4वां श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाए, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिस सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और आद्यम पुरुष पुरुषम उस आदि पुरुष परमेश्वर की नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, परपदे माने ध्यान करना चाहिए। अब यहां तक हम स्पष्ट हो गए, यहां तक ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय बता रहा है, वो कह रहा है संसार इस सृष्टि की रचना से मैं परिचित नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो उनके विभाग सहित बता होगा सह वेदवित। अब कई भक्तात्मा कहते हैं कि इस दास के विषय में कि रामपाल तो जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को मना करता है, पुण्यात्माओं इस दास के ज्ञान से तो परिचित नहीं होते, और ये ज्ञान ऐसा है कि एक दो दिन में समझ माने वाला नहीं है, ये और संतों वाली कथाएं नहीं है, सुदामा कृष्ण की कथा सुना दी है, कोई संतोषी माता की कथा सुना दी, 2 मिनट लग गए सारे राजी, क्यों वो पहले उस रंग में रंगे हुए थे, नहीं ये ज्ञान तो माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस जीरो गए हुए थे आप जी, और उससे ऊपर जाना 100 पर पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए समय चाहिए, वो समय ना मिलने से वो ये सोचते हैं कि रामपाल तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना उनको हीन बताता है, उनको छोटे बताता है, उनकी पूजा छुड़वाता है, कभी नहीं। अब पहले तो हम पूजा की डेफिनेशन से परिचित नहीं, पुण्यात्मा हमारा एक ये सह परिवार है, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से आपका भी परिचित कराते हैं, उसके बाद ये उदाहरण देगा दास। आप जी कोई नर्सरी से पौधा लाए आम का, उसको कैसे प्रॉपरली कैसे बीजा जाता है, उसको गड्ढा बनाओ और उसकी मिट्टी के अंदर जड़ को दबाओ और फिर जड़ की सिंचाई करो, तो वो सही पौधा लगाने की पौधा बीजने का प्रॉपर वे है। और हम क्या कर रहे थे, जैसे अभी आपने देखा कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी तो ये तमगुण शिवजी रूपी तो शाखा है उस पेड़ की, हम पेड़ की शाखा पूजन लागे और जड़ की पूजा छोड़ दी हमने, पूजा माने सेवा। हम कैसे कर रहे थे ये एक आम का पौधा लाए, हम मान लीजिए इसको एक मिट्टी समझे, पृथ्वी में दबा दिया, मिट्टी में जड़ की तरफ से, और जड़ की पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की, तो पौधे को यहां से खुराक मिली। इसकी पूजा करने से ये सभी पूरा पौधा पेड़ बन गया। ये तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, और ये तीनों देवा रूप, तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं। अब यहां से खुराक चलेगी, ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ति अवेश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके यहां से खुराक चलेगी तना में, अक्षर पुरुष में, फिर क्षर पुरुष में, सर पुरुष में, सर पुरुष से फिर ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण तमगुण सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं में ये आहार गया, फिर ये पेड़ बना, फिर शाखाओं के फिर फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं ही हमें फल देंगी, लेकिन देंगे कब, जब हम मूल मालिक की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करेंगे। ये हमारी शास्त्र अनुसार साधना होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना व्यर्थ होता है। शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा ये। और हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे थे और मूल मालिक को जड़ की पूजा नहीं कर रहे थे, तो हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख गया। हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आने लगे, हम महा दुखी हो गए, और जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे। और जब हम इसको ऐसे बीज लेंगे, ये है शास्त्र अनुकूल साधना। एक साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे, माली सिच मूल को फले फुले गाय। जड़ की साधना करने से, पूजा करने से सबकी साधना होगी, और हम सबकी साधना कर रहे थे, इस साधना से हमारा सारी भक्ति नष्ट होगी। शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विरुद्ध साधना, उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम ऐसे कर रहे थे, हम भक्ति मार्ग में इतने अनजान बालक हैं, हम साधना ही, हम उल्टा पौधा बीजे बैठे थे। अब दास ये कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ने को नहीं कहा, ये तो हमें फल देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो यहाँ के प्रबंधक हैं, हमारा जो कर्म बनेगा अच्छा कर, सही शास्त्रों को साधना का जो कर्म बनेगा, फल तो इन्होंने देना है। तो इतना मूर्ख कौन होगा, इन्हों का टहनिया काट दो, पेड़ पेड़ की जड़ की पूजा करो। ये जब ऐसी साधना होगी, ये बिना मांगे आपको फल देंगे। एक साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे, माली सिचे मूल को हो, ये फले फले आएगा। अपने आत्माओं, इसी के साथ थोड़ा सा और लिंक बनता है, फिर पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जो आज का प्रकरण आपके बिल्कुल अर्थव समा जाएगा। जड़ की पूजा करने से, शास्त्रानुकूल साधना करने से, उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में मानकर उसके आधारित हो जाने से, जो हम क्रिया साधनाएं करते हैं शास्त्रानुकूल, उनसे हमारे पुण्य बनने से, हमारा जो डिपॉजिट है, हमारा पुण्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास चला जाता है। और फिर ये हमारे जो किए हुए शुभ शास्त्रानुकूल साधना के कर्म को, कर्म का फल यही देंगे, जैसा किया है वैसा ही फल ये भगवान देते हैं, उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। और उसकी विधि ये बताई जा रहा है कि अब हम ये साधना करेंगे तो हमारा पौधा हरा भरा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इतना हमारा संचित धन हो जाएगा पुण्य का, वो अपने आप आपको सुविधा देनी प्रारंभ कर देंगे, बिना मांगे देंगे। अब देखना, गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक आपको समझाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 3 का 10 से 15, अध्याय नंबर 3 और यहां 10 से प्रारंभ करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्रानुकूल साधना द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ग्यारहवें इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी देवता इस शास्त्रानुकूल साधना से उन्नत होंगे, ये बड़ी टहनी बन जाएंगी, बड़ा पेड़ बन जाएगा और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। बार मंदिर कितना अच्छा कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता उस शास्त्रानुकूल साधना से जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां पूरी बड़ी बड़ी शाखाएं बन जाएंगी, वो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे वो। फिर यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता शास्त्रानुकूल साधना से की भक्ति उससे ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां बड़ी हो जाएंगी, वो फल देने लग जाएंगी, बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए अर्थात दान धर्म नहीं करता स्वयं ही भोगता है तो वो तो चोर है। जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, यज्ञ आदि पाठ आदि नहीं करवाता, दान नहीं करता, वो तो चोर है। जो भगवान ने तुम्हें धन दिया उसमें से नहीं दान करता वो चोर है। अब तेरहवें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अध्याय नंबर 3 का श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 3 का 13वां श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर जो 31 में आपने पढ़ा उसका आशय है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से करते हुए पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचता है हम आपको बांटते हैं वो है यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। और देखो 14 और 15 में कमाल कर रखा है, यहाँ क्या लिखा है 14 और 15 में, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ यज्ञमान धार्मिक अनुष्ठानों से हवन आदि करने से, और यज्ञ विहित कर्मों से, कर्म सम उद्भवम यानी शास्त्र अनुकूल साधना रूपी कर्मों से होती हैं यज्ञ श्रेष्ठ संपन्न होती हैं। और कर्म को तू अब काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, तो कर्म को तू ब्रह्मोद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये गलत कर दिया, ये कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करके धंधा करके अपने पुण्य भी करने पड़े और पेट के लिए करना पड़ा। सतलोक में हम निष्कर्म में मुक्ति प्राप्त थी, वह बिना किए सब कुछ मिल रहा था, यहाँ कर्म वेद से नहीं, ये कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, इस काल के द्वारा लगाए गए कर्म। और ब्रह्म की उत्पत्ति यहाँ वेद गलत कर दिया, ब्रह्म की, ब्रह्म को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यहाँ अक्षर का अर्थ है अविनाशी, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। इस ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष से हुई है, उत्पन्न हुआ जान, और इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म वो वासुदेव यानी सबके ऊपर जिसकी सत्ता है वो सर्वगतम माने सर्वव्यापी, ब्रह्म माने ब्रह्म यानी ब्रह्म, तो ये काल जो है तो ये किस ब्रह्म में व्यापक है और ये परब्रह्म है ये सात संग ब्रह्मांड तक व्यापक है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म वो सर्वव्यापी है, वो सर्वगतम ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा हाँ ये अनुवाद सही है इनका। परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, धार्मिक अनुष्ठानों में वही एक हमारा पूज्य है, वो हमारा इष्ट होना चाहिए। उसी को इष्ट मानकर जो साधनाएं की जाती हैं उससे फिर ये सब लाभ हमें होता है। अपने आत्मा ये सदग्रंथ है, और आप जी पहली कक्षा के बालक भी नहीं हो, जब तक यहाँ जिसने एक दो वर्ष तीन वर्ष नहीं हुए, और जो यहाँ आते हो पहली कक्षा के बच्चे स्टार्ट करवाते हैं ए बी सी से लेकर और पीएचडी तक आपको इसी माध्यम से सत्संग के माध्यम से कराई जाती है। अब इतना प्रमाण देकर के आप जी को इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित कराया गया है। परमेश्वर क्या कहा करते कबीर जी, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। एक तो होते हैं नकली गुरु, इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, पूरे समूह के समूह को बर्बाद कर दिया। कोई किसी तरह पूजा करता है, कोई किसी तरह। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भाव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। अब जैसे भादो के अंदर बहुत वर्षा होती है, और भादो के अंदर नदी दरियाएं बहुत उमड़ कर चलती हैं, और उससे पार जाने की कोई प्रार्थना करता है, साधन वो पता करता है, और उसको कोई व्यक्ति कहे कि ये भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया में प्रवेश हो जा, ये तुझे पार कर देगी, दोनों डूबेंगे दो फुट जाते। तो अभी तक जो साधनाएं हम कर रहे थे वो भेड़ की पूछ पकड़ रहे थे, और अब हमें दरिया से पार होने का एक इंजन वाली नौका मिल गई और वो पार कर देगी, यानी ये सही मंत्र सही साधना हमें अप्राप्त होगी। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सतसंगा। वो ही इस संसार रूपी सागर में जन्म और मृत्यु के चक्कर में रह जाते हैं जिनको संतों का संग नहीं मिलता, जिनको सही संत नहीं मिलते। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पारे। यानी एक इस सत साधना के अतिरिक्त जो भी हम साधना करते थे या करते हैं, ये अन्य भक्त वो ऐसा कर रहे हैं, भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और दरिया से पार जाने की चेष्टा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हर जैसा पुरख न लभई

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 4039-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे।

तेरांतना परावरया रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सास जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला
तित सर्वरडय भईले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हादय मोहे बचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अबरिया मरन काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड चारत भेदा जाको भेवना पापत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो संकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता
जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं ताकि काल निकट न आहें। रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे।

प्रथम पगौती सिमर कै गोर नानक लई ते आई, फेर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाई। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराऊं श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते

सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पात

अजामल पापी जग जाने निमुख बाहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मना

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street Northeast Calgary।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।